महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रह्लाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंत्रा चाल चलती रही।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी

सभी सुनने वालों को किरणी का नमस्कार। पेश है कार्यक्रम सरगम। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के गीत के साथ, जिसको संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, जिसके गीतकार है अनजान और गायक है किशोर कुमार और लता मंगेशकर।

की पेशकश है फिल्म दुल्हन वही जो पिया मनवाए से, जिसके संगीतकार और गीतकार है रविंदर जैन और गाया है हेमलता ने।

0: लीजिए आप सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म प्रेम कहानी से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है आनंद बख्शी।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे

अब पेश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है सरगम।

प्रोग्राम की अगली पेशकश है फिल्म त्रिशूल से, जिसके संगीतकार है खयाम, गायक है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश, और गीतकार है साहिर लुधियानवी।

लीजिए आप सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म कारवां का गाना, जिसके गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है आरडी बर्मन।

अब सुनाने जा रहे हैं वर्मा मल्लिक का लिखा हुआ गीत, जिसको संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। गायक है लता मंगेशकर और फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान।

अगली पेशकश है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश किशोर कुमार की आवाज में गाना, जो फिल्म है अमर अकबर एंथोनी से, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लीजिए अब सुनते हैं आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, जिसके बोल है आनंद बख्शी के, गायक हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म है हरे कृष्णा हरे रामा।

लीजिए पेश है प्रोग्राम की अंतिम पेशकश, जिसके गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक आशा भोसले और फिल्म है लोफर। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत, किसी और प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 4, प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग, करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। धान में ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तेला से बचाव के लिए समय पर करें निगरानी। लक्षण दिखते ही दवा का छिड़काव, संतुलित सिंचाई रखें। धान की पत्तियों पर बदरा यानी ब्लास्ट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और तेला जैसी बीमारियों एवं कीड़ों का आक्रमण हो सकता है। ऐसे में किसानों को सजग रहना चाहिए और समय पर खेतों का निरीक्षण कर बचाव के प्रबंध करने होंगे। HAU के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि बदरा यानी ब्लास्ट बीमारी के लक्षण नजर आते ही प्रति एकड़ 300 मिलीलीटर आइसोप्रोथिलियन 40% EC या 200 ग्राम कार्बोडाइजिन 50 WP के घोल का छिड़काव करें। पानी की मात्रा 200 लीटर रखें। दूसरे छिड़काव 50% बलियां निकालने पर करें। बलियां निकालते समय खेत में सूखा ना लगने दें। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या जीवागुण पत्ती अंगमारी जिन खेतों में आ जाए उनमें पानी लगातार ना खड़ा रहने दें और ना ही उस खेत का पानी दूसरे खेत में जाने दें। ऐसे खेतों में नाइट्रोजन खाद बाद में डालें। खेत में खरपतवार को ना पनपने दें, छिड़काव जरूरी। धान की फसल में पानी की कमी ना होने दें। सिंचाई 5 से 6 सेंटीमीटर से अधिक गहरी ना करें। खेत में खरपतवारों को कभी ना पनपने दें। सफेद पीठ वाला व भूरा तेला पौधे के तने के साथ लगा रहता है। 120 ग्राम पाइमोट्रोजिन 50% WUG चेस 50% WUG या 80 ग्राम डाइनोटिफ्रॉन 20 AG ओशीन 20 AG को 200 लीटर पानी से मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। रोपाई के 3 से 6 माह बाद डालें नाइट्रोजन। HAU ने किसानों को सलाह दी है कि धान में यूरिया का प्रयोग फॉस्फोरस के स्तोत्र के अनुसार करें। यदि फॉस्फोरस की प्रति DAP से की गई है तो किस्म के अनुसार 42 से 110 किलोग्राम और SSP से की गई है तो 52 से 130 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया डालें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा पहले देने के बाद शेष 2 बराबर भागों में रुपाई के 3 और 6 सप्ताह बाद डालें। शीत ब्लाइट पर 15 दिन में छिड़काव करें। HAU ने किसानों को सलाह दी है कि शीत ब्लाइट बीमारी से बचाव के लिए खेत और मेंढों पर दूब व अन्य घास ना उगने दें। बीमारी के लक्षण दिखते ही अनुचित फफूंदनाशी का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव भी करें ताकि बीमारी का फैलाव रोका जा सके। सीधी बिजाई वाली किस्मों में डालें यूरिया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र चंद्र के अनुसार सीधी बिजाई बासमती धान की लंबे कद की किस्मों के लिए 55 किलोग्राम यूरिया और छोटे कद की किस्मों के लिए 90 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ डालें। नाइट्रोजन की मात्रा लंबे कद की किस्मों में बुवाई के 2 एवं 7 सप्ताह बाद डालें, जबकि छोटे कद की किस्मों में 3 और 6 एवं 8 या 9 सप्ताह बाद डालें। बत्तर व सूखी अवस्था वाले खेतों में सिंचाई मौसम अनुसार सप्ताह के अंतराल में करें। जैविक खेती को बढ़ावा। वर्मी कंपोस्ट पर मिलेगी 80% सब्सिडी। सीजन में 2 बार खुलेगा पोर्टल। रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही मिलेगा लाभ। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने, इससे जुड़े किसानों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को जैविक खाद
वर्मी कंपोस्ट पर 80% सब्सिडी देने की योजना के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बचाना है। योजना के अनुसार यह सब्सिडी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की वैज्ञानिक सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत जैविक उर्वरकों पर ही जारी की जाएगी। कृषि उप निर्देशकों के लिए जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा टिकाऊ तंत्र विकसित करना है जिसमें किसान सुरक्षित स्वस्थ और अवशेष मुक्ति कृषि उत्पादकों का उत्पादन कर सके। कृषि विभाग के महानिदेशक ने सभी जिलों के उप निर्देशकों को इन दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक किसान जागरूक होकर इस सब्सिडी योजना का लाभ उठाकर जैविक खेती की ओर रुख करें। ऐसे करें आवेदन। पंजीकरण अनिवार्य। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत है। ऑनलाइन प्रोसेस। किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के अनुसार किसान का सारा विवरण मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल से संबद्ध ही ले लिया जाएगा। अनुभव की जानकारी। आवेदन करते समय किसानों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे पहले से जैविक खेती कर रहे हैं या इस क्षेत्र में नए हैं। जैविक खेती का दायरा बढ़ाना। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करना है ताकि किसानों की रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो और मिट्टी की सेहत सुधरे। जैविक खेती से खेत की मिट्टी में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाना है। कृषि अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा और किसानों का खर्च घटेगा। उपभोक्ताओं तक रसायनों से मुक्त स्वस्थवर्धक कृषि उत्पाद पहुंच सकेगा। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होंगे आवेदन। कृषि विभाग के एपीपीओ डॉक्टर सतीश ने बताया कि जो किसान जैविक खाद पर सब्सिडी चाहते हैं उन्हें विभाग द्वारा जारी पोर्टल पर योजना का लाभ देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग ने खरीफ और रबी फसलों के लिए अलग अलग समय सीमा तय की है। खरीफ फसलों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक होगी। रबी फसलों के लिए आवेदन की 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की जा सकती है। किसान को तय सरकारी दुकानों से प्रोडक्ट खरीदने होंगे। इसके बिल अपलोड करने के लिए सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं पोर्टल में नुकसान मानता हूँ, मौसम परिवर्तन का यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों कुछ ना कुछ भरपाई हो गई जी। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किदी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 7। आज का शीर्षक है सही चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता RJ किरनी। यह है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, लेकर आई हूं पॉडकास्ट विद किरनी का एक और एपिसोड। जिंदगी के रास्ते कभी सीधे होते हैं, कभी टेढ़े। कभी हम रास्ते चुनते हैं और कभी रास्ते हमें चुनते हैं। पर एक बात याद रखना जरूरी है, अगर रास्ते सही हो, नियत साफ हो और कदम ठीक दिशा में उठे तो मंजिल दूर नहीं रहती। आज का पहलू वही है, सही चलेंगे तो फायदे मिलेंगे। एक छोटी सी सोच जो बदल सकता है जीने का नजरिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच के सफर पर। अगर हम सही दिशा में चलें तो हर रुकावट एक सीख बन जाती है और हर हार एक नया मोड़। तो आइए आज से थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सोच कर चलिए, क्योंकि सही चलेंगे तो फायदे जरूर मिलेंगे। और आज के पॉडकास्ट का हमारा विषय यही है, सही चलेंगे तो फायदे मिलेंगे। चलना भी एक व्यायाम है, एक ऐसा आसन और प्रभावी व्यायाम जो न केवल शरीर को दुरुस्त और सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है बल्कि हृदय को भी स्वस्थ रखता है। हालांकि ये असरदार तब तक ही है जब तक चलने का तरीका सही हो। कई लोग केवल फिट रहने के लिए रोज चलते हैं, लेकिन अगर तरीका ठीक नहीं है तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए अगर आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चलते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि सही तरीके से कैसे चले, ताकि आप इसके पूरे लाभ ले सकें। गलतियां जाने और सुधार करें। फोन पर बात करना या स्क्रीन देखना। कई लोग चलते वक्त मोबाइल फोन पर बात करते हैं या मैसेज टाइप करते हैं। गर्दन और पीठ के झुके रहने से दर्द हो सकता है व हृदय और फेफड़ों को लाभ कम मिलता है। चलने पर ध्यान केंद्रित करो, स्क्रीन का उपयोग ना करें। बातें करना या ध्यान भटकाना। चलते हुए लगातार बात करने से गति और सांस लेने का पैटर्न बिगड़ सकता है। इसके कारण फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और जल्दी थकान महसूस होगी। कैलोरी जलाने की क्षमता भी कम होगी। सही ये है, किसी के साथ चल रहे हैं तो शांत रहे, बातें करने से बचे। बहुत धीमी या तेज चलना। बहुत धीरे चलने से हृदय की कार्य क्षमता में अधिक सुधार नहीं होता। दूसरी ओर बहुत तेज चलने से सांस लेने में दिक्कत और थकान हो सकती है। इससे वजन घटाने की प्रक्रिया धीमी होगी और मांसपेशियों में खिंचाव होगा। सही यही है, चलते समय एक स्थिर और संतुलित गति बनाए रखना जरूरी है, ना तो धीमे ना बहुत तेज चलिए। पानी नहीं पीना। चलने के दौरान शरीर से पसीना निकलता है जिससे पानी की कमी हो सकती है। कई लोग इस दौरान या बाद में पर्याप्त पानी नहीं पीते, जो कि सही नहीं है। इसके कारण शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और सिर दर्द होता है व मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। सही यही है, हर 10 मिनट में एक एक घूंट पानी पीते रहें। तुरंत बाद अधिक खाना। चलने के तुरंत बाद भारी भोजन करने से पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है। पेट में भारीपन और अपच महसूस होगा। शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होगा। हृदय के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सही यही है, चलने के 30 मिनट तक के बाद ही कुछ हल्का भोजन करें। नीचे देखकर चलना। कई लोग लगातार नीचे देखते हुए चलते हैं। इससे गर्दन और कंधों पर दबाव पड़ता है जिससे जकड़न और दर्द हो सकता है। ये रीढ़ की हड्डी को भी प्रभावित करता है जिससे समय के साथ शारीरिक मुद्रा खराब होती है। सही यही है, चलते समय पीठ सीधी रखें, कंधों को ढीला छोड़े और गर्दन उठाकर रखें। लंबे ढग भरना। बड़े कदम लेने से घुटनों, कुल्हों और टखनों पर दबाव पड़ता है। इससे जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और मांसपेशियों में असंतुलन व चोट लगने का जोखिम होता है। सही यही है, छोटे छोटे कदम ले, पैरों पर अधिक दबाव व खिंचाव ना आने दे। हाथ तान कर चलना। कई लोग चलते समय हाथों को तान कर चलते हैं या फिर बहुत ज्यादा हिलाते हैं। इससे शरीर की प्राकृतिक लय बिगड़ सकती है। इससे चर्बी कम पिघलेगी और संतुलन में कमी आएगी। सही यही है, हाथों को हल्का लेकिन नियंत्रित रखें। तेज गति से झुलाने से बचें। क्षमता से अधिक चलना। चलना फिटनेस के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इसे ज्यादा अवधि और तेज गति से किया जाए तो पिंडली की हड्डी के साथ या उसके आसपास दर्द हो सकता है और थकावट का कारण बन सकता है। सही यही है, क्षमता से अधिक ना चले, धीरे धीरे समय बढ़ाइए। घर पर चले, आप घर में भी अलग अलग तरीकों से चल सकते हैं, ये भी काफी असरदार है। घर के हॉल या कमरे में छोटे छोटे कदम चले या सीधे रेखा में आगे पीछे चले। एक स्थिर गति बनाए रखें और शरीर का सीधा रखें। बेहतर संतुलन के लिए हाथों को स्वाभाविक रूप से हिलाइए। उल्टा चले, उल्टा चलना शरीर के साथ साथ मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद है। अभ्यास के लिए एक सुरक्षित रुकावट रहित स्थान का चुनाव करें। धीरे धीरे उल्टे कदम चले और कदमों का संतुलन बनाए रखें। साइड वॉकिंग, पैरों को एक साथ रखें, एक पैर बगल में रखते हुए कदम बढ़ाए, दूसरे पैर को उसके पास लेकर आए, इससे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोहराए। सीढ़ियों पर चढ़िए, सीढ़ियों पर धीमी गति से चढ़िए। इस दौरान शारीरिक मुद्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक सफर है जहाँ हर मोड़ हर रास्ता कुछ सिखाता है। अगर हम सही दिशा में चले तो हर रुकावट एक सीख बन जाती है और हर हार एक नया मोड़। तो आइए आज से थोड़ा ठहर कर, थोड़ा सोच कर, थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि सही चलेंगे तो फायदे जरूर मिलेंगे। फिर मिलेंगे एक नए पहलू के साथ, एक नए पॉडकास्ट में, नए जज्बात के साथ। तब तक याद रखिए, राहें वही चुनिए जो मंजिल तक ले जाए, ना केवल भीड़ में छुपा दे। नमस्कार।

0: अर्थात वो दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाख शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाख यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवा की ये श्रृंखला।
1: आज का जो ललवाक है ये बड़ा ही विचित्र ललवाक है, इसमें आपको साइंस भी दिखेगा। मैं इस ललवाक की बात आपको बताता हूँ। लल कहती है, बान गोलते प्रकाश और जुंगे, चंद्र गोलते मुती सेथ, सेथ गोलते कहते ना पुने, गई भूल वह विसर्जित कहते। इस वाक में आपको सुनाई देगा कि बान गोलते प्रकाश और जुंगे, यानी सन जब डूब जाता है, जब खत्म हो जाता है, जब डिसॉल्व हो जाता है, तो चंद्रमा निकल के आता है, मून चमकना शुरू कर देता है। और जब वही मून डिसअपियर हो जाता है तो जो कॉन्शियसनेस की लाइट है वो निखर के सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस भी डिसॉल्व हो जाता है तो बचता क्या है? बचता वो शून्य है, बचती वो एम्प्टीनेस है। और उस एम्प्टीनेस में ये भूर वो अस्वह तीनों जो कॉस्मिक प्लेन्स हैं, ये तीनों के तीनों उस एम्प्टीनेस में, उस शून्य में खत्म हो जाते हैं। अगर आप आज साइंस भी देखेंगे तो न्यूरोसाइंस हमें कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। वो कहता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रेन का एक आउटकम है, लेकिन जो लल कहती है उसके कहने के अनुसार कॉन्शियसनेस ब्रेन का आउटकम नहीं है, बल्कि ब्रेन कॉन्शियसनेस का ही एक आउटकम है। ब्रेन रिसीवर है, ब्रेन रिफ्लेक्टर है उस कॉन्शियसनेस का। जैसे चंद्रमा जो है वो बिना सूर्य की लाइट के चमक नहीं सकता, वैसे ही हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो बिना उस अवेयरनेस के फंक्शन नहीं कर सकती। यानी जैसे जैसे अवेयरनेस अपना विस्तार करती है, जैसे जैसे चित्त का विस्तार होता है, उस चित्त के विस्तार के साथ साथ ही मैं उस नीचे के प्लेन से ऊपर के प्लेन्स की ओर मुड़ना शुरू हो जाता हूँ। और एक समय ऐसा आता है जब मुझे फिजिकल लाइट, जब मुझे फिजिकल अवेयरनेस से परे हट के मुझे उस कॉन्शियस अवेयरनेस, उस कॉस्मिक अवेयरनेस की ओर लेके जाता है। और उस कॉस्मिक अवेयरनेस से भी जब मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो मैं एक अल्टीमेट शून्य में पहुंच जाता हूँ, जहां मुझे किसी लाइट की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा अगर सूर्य की लाइट खत्म हो जाए तो चंद्रमा की लाइट से हम देखते हैं, अगर चंद्रमा की लाइट अंधकार हो जाए तो हम मन की आंखों से देखते हैं, लेकिन जब मन की आंखें भी चली जाएं तो फिर वहां शून्य ही बचता है। उस अंधकार में बस सिर्फ वही एक कॉस्मिक साउंड, वो फील्ड ऑफ इनफिनाइट पोटेंशियल, वही बच जाता है और वही शिव है।

मेरे शब्दों में तुम्हारे नाम की दीवानगी हमेशा महफूज रहती, जो तुम मेरी ढलती उम्र को अपनी पनाह में लेते, मेरे गुनाहों को अपने आंचल में छिपा लेते और मेरी दर्द को अपना दर्द समझते, मेरी परेशानी में मेरे हम कदम साथ साथ चलते, मेरे सफर के आखिरी पड़ाव तक जहां से हमारे तुम्हारे बीच पनपे एक नए रिश्ते की

हुस्न की, तेरी पाकिजगी की, तेरी रिश्तों की, तेरी मासूमियत की। कोई बात चले तुम्हारे ख्वाबों की, तुम्हारी इबादत की, वो बारिशों में भीगने की, वो तपती दिल मिलाती धूप में बेपनाह इंतजार की। कोई बात चले ढलती शामों की, सुरमई रातों की, गुप्त अंधेरों की, तेज रोशनी की। कोई बात चले मंदिरों में पूजा की, मसाजिद में अजां की। कोई बात चले वादियों में खामोशी की, तनहा पत्थरों की, परिंदों की, इन घटाओं की, फिजाओं की, भटकी रूहों की। कोई बात चले हम दोनों की

वो खूबसूरती है जिसे महसूस किया जा सकता है तज़किरा नहीं। इन नीले आसमानों पर ये बादल के टुकड़े तैर कर तुम्हारे आंचल में पनाह लेते हैं, इसका एहसास है हमें। पर क्या तुम्हारे आंगन के किसी कोने में धूप जन्म लेती है कि नहीं? नहीं, शायद नहीं। इसीलिए इस घर की दर दीवार हमेशा पिघलते रहते हैं और टूटी छत से पानी की कुछ बूंदें जा गिरती हैं तुम्हारी मुस्कुराती तस्वीर पर, जो बरसों से इन तन्हा खामोश पत्थरों को अपने हुस्न जमाल से रौनक बख्शती आ रही है।

चलन है, मेरी रास्ते की हर रह गुजर क्या इतनी कठिन है। मांगी थी रोशनी पर अंधेरों ने दामन थाम लिया है। चाहा था फूल खिले मेरे आंगन में, पर कांटों से दोस्ती हो गई। कई बार इस तरह के सिलसिले जारी रहे और हम उफ तक न कर सके। शायद मेरा वादा था जिंदगी से जो निभाता आ रहा हूं मैं जन्मों जन्मों से, एक उम्मीद के साथ कि तेरा मेरा मिलन

आज ये मन क्यों उदास है? क्या मेरी गली से गुजरना वो अब भूल गई है? आज इन आंखों में ये अश्क क्यों बह रहे हैं? क्या अब भी वो अपनी दुनिया से नाराज है? आज मुझे भीगना अच्छा क्यों नहीं लगता है, जबकि आज की ये बारिशें मेरी दुआओं में शामिल थी। अक्सर तुम्हारे आने की आहट मेरी खामोशी को क्यों सुला देती है? क्यों तुम्हारी यादें आ आकर मुझे रुला देती हैं? क्यों आज यहां इन जमीनों पर अब भी मोहब्बतों का बंटवारा किया जाता है? क्यों अब भी यहां इन बोलते परिंदों की सरेआम बोली लगाई जाती है?

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं कार्यक्रम पहला प्यार का अंक दो। जिंदगी का पहला प्यार कौन भूलता है? यह पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से ज्यादा चाहता है, उसकी पसंद, उसकी ख्वाहिशों में खुद को भूल जाता है। हर जगह हर पल उसका ही चेहरा नजर आता है, अकेले में उसका नाम लिख लिख कर दिल मुस्कुराता है। दिल बात करने से पहले सोचता है कि क्या कहना है, बात कहने के बाद भी कुछ कहना रह जाता है। होता है इतना खूबसूरत पहला प्यार, फिर भी न जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है। जब भी आता है जुबां पर नाम उसका, पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है। तसल्ली होती है दिल को कि कोई तो है अपना जो हंसाते हुए भी अपनी यादों से रुला जाता है।

पहले प्यार से कोई परिचित ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अमूमन हर चीज का कुछ न कुछ विकल्प मौजूद होता है, लेकिन पहले प्यार का कोई विकल्प नहीं होता। युवावस्था में जीवन हमें जहां ले जाता है

जीवन में किसी घटना का होना केवल एक ही बार होता है, जिस वजह से उस घटना की याद अविशेष रूप से स्थान बना लेती है। ठीक उसी तरह आपका पहला प्यार भी है। आपका पहला प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। कारण यह है कि आपका पहला प्यार है। पहला प्यार हमेशा आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पहला ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में आपको किसी से और कितना गहरा प्यार हो रहा है। हम जब भी अपने आज को देखते हैं तो हमें अपने सुनहरे कल की याद जरूर आती है।

जिस मंजिल को ढूंढता था कभी, शायद तुम वही हो जिसके दुपट्टे में उंगलियां फंसाकर जिंदगी गुजर जाए, शायद तुम वही हो जिसके सपने मैंने भोर तलक देखे हैं, शायद तुम वही हो। सोचता हूं हर बात उससे आज कह दूं, पर कैसे, निगाहों की जुबान नहीं आती, मुझे सच है ये, मेरे दिल की धड़कनों से तू अपनी हर बात पूछ ले। लड़कपन की वो सारी नादानियां चाहता हूं, छूट गए जो सपने उन्हें तेरे संग जीना चाहता हूं, तेरे इर्द गिर्द आवारा हवाओं सा घूमना चाहता हूं, तेरी नींदों में हर रोज मैं जागना चाहता हूं। निगाहों की जुबां नहीं आती, मुझे सच है ये, खामोश रहकर भी हर बात तुझसे कहना चाहता हूं। तुझसे हर सुबह हो मेरी, सांझ भी तुझसे हो, उथल पुथल हो चाहे जिंदगी, पर तेरे संग आराम सा हो, बैठी रहे तू संग मेरे, बाहों में डाले हाथ, तेरी आंखों के समुंदर में डूबकर हो जाए शाम। कुछ ख्वाब अधूरे हैं मेरे जो तेरे संग मुझे जीने हैं, निगाहों की जुबान नहीं आती, मुझे सच है ये, मेरे दिल की धड़कनों से तू अपनी हर बात पूछ ले।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहला प्यार अंक दो, भरत सोपोरी के साथ, और सुनाते हैं आपको एक कविता और एक मनमोहक प्यार का गीत। कविता को आवाज दी है आरजे सेजल ने।
1: एक प्रीत की कहानी है, ये बात थोड़ी सी पुरानी है। मेरा पहला प्यार था जो अब भी मेरी जुबानी है। यूं तो थी सिरफिरी मैं कम नहीं, जिद भी उसकी गुमानी थी। लड़ती थी, झगड़ती थी, अजीब सी हमारी दोस्ती थी। जब मिली थी उससे ना बात उसकी कोई भी मानी थी। धीरे धीरे जाने क्यों अब उसकी आदत सी हो गई थी। आंखों से दिल पढ़ना, हाँ माना शायरी पुरानी थी, पर सच मानो झांकूं उसकी आंखों में तो बस मैं और वो, बाकी दुनिया अनजानी थी। ना प्यार मोहब्बत की बातें थी, ना ही घंटों मुलाकातें थी। उसकी एक नजर और मुस्कान चेहरे पर आ जानी थी। हर दिन ढलता था और ये एहसास बढ़ता जाता था। वो गुजरता जो पास से तो सांसों में भगदड़ मच जानी थी। जब पहली मोहब्बत का इजहार हुआ तो मौसम चिलचिलाती धूप का और हल्की हवा का झोंका सबसे सुहाना था।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहला प्यार एपिसोड 2। इसमें आखिरी कविता को आवाज दी आरजे सेजल ने। एडिट, रिकॉर्ड, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की।

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: पेश है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला, पेश कर रहे हैं आरजे नरेश शर्मा, एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी।
2: हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमको तलाश रही है क्यों तेरी बेताब नजरें, खुद में झांक हम तेरी आंखों में दिखाई देंगे। ओ हां नमस्ते, ये तो मैं कहना भूल ही गया आपसे, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। एक खास प्रोग्राम आपके सामने आज लेकर आ रहा हूं। ये रेडियो वितस्ता का वितस्ता गीतमाला नामक प्रोग्राम है। शुरू करने जा रहे हैं हम संगीत का वो सफर जो कुछ समय के लिए आपके सारे दुख, आपकी सारी चिंताएं और आपकी सब परेशानियों को आपके दिल और दिमाग से दूर कर देगा। और अगर कुछ रहेगा ना तो सिर्फ जहन में एक ही नाम, वितस्ता गीतमाला। और इसके साथ होंगी प्रज्ञा गोयल जी की शायरी, मेरी आवाज और रेडियो वितस्ता का साथ। रेडियो वितस्ता के इस विशेष कार्यक्रम से जिसका नाम है वितस्ता गीतमाला पार्ट टू। कांटों भरा है सफर, मेरे साथ चलो। कांटों भरा है सफर, मेरे साथ चलो। ना जाने कब हो गम की सहर, मेरे साथ चलो। मैं अकेले भटक न जाऊं कहीं, अंधेरी है डगर, मेरे साथ चलो। तेरे पथ में तेरे हमराह और भी हैं, तेरे पथ में तेरे हमराह और भी हैं, मैं जानती हूं मगर मेरे साथ चलो। है तुझको नसीब सपनों का बसेरा, मैं मुसाफिर हूं उम्र भर, मेरे साथ चलो। अंधेरी है डगर, मेरे साथ चलो।

उठते उठते एक दिन अभिमान भी उठ जाएगा, उठते उठते एक दिन अभिमान भी उठ जाएगा, जनाजे के पीछे ये सारा सामान भी उठ जाएगा, उठ जाएगा ये शोहरत का लबादा भी एक दिन, इस किराए के घर से ये मेहमान भी उठ जाएगा, रह जाएगा यहां बस कुछ यादों का कारवां, सब मुझी से है ये गुमान भी उठ जाएगा, ये गुमान भी उठ जाएगा।

देखिए साहब, लोग किस तरह से किसी को भूलने की कोशिश करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं। एक कवियत्री ने अपनी कलम से क्या खूब इसका जिक्र किया है, और ये कवियत्री कोई और नहीं, प्रज्ञा गोयल जी हैं। प्रज्ञा जी कहती हैं कि पानी पर पानी से लिखकर नाम मिटाती हूँ तेरा, पानी पर पानी से लिखकर नाम मिटाती हूँ तेरा, भुला दिया है यह कहकर जिक्र दोहराती हूँ तेरा, तेरे नाम का सिरहाना अब भी खाली रखती हूँ, तेरे नाम का सिरहाना अब भी खाली रखती हूँ, एक करवट से सोती हूँ अब भी राह तकती हूँ, दिल के पिंजरे में प्रेम का पंछी संभाल रखा है, तू लौटेगा एक दिन अब भी ये वहम पाल रखा है, तू लौटेगा एक रोज अब भी ये वहम पाल रखा है।

गीत मेरे, जब तेरा नाम गुनगुनाए तो चले आना। गीत मेरे तेरा नाम जब गुनगुनाए तो चले आना, खुली आंखें ख्वाब तेरा दिखाएं तो चले आना। पत्तों की साए साए में जब तेरे कदमों की आहट हो, फूलों में भी तेरे सांसों की महक हो तो चले आना। ये गलियां कूचे आशियाना आज भी जानते हैं तुझे, ये गलियां कूचे आशियाना आज भी जानते हैं तुझे, मेरे हर नासूर का मरहम हकीम मानते हैं तुझे। वक्त रुखसत की जो खबर मिले तो चले आना, गीत मेरे जब तेरा नाम गुनगुनाए।

अब देखिए, प्यार की जहां तक बात है, किसी को प्यार नहीं मिलता तो साहब किसी को दिलदार नहीं मिलता। इसलिए एक सुनहरी कलम से लिखा गया, जमाने भर में ढूंढो मगर अब प्यार नहीं मिलता, जमाने भर में ढूंढो मगर अब प्यार नहीं मिलता। दुनिया भुला बैठे हैं इस चाहत में, वो दिलदार नहीं मिलता। मेरी शख्सियत को वो जमाने भर में खोजो मगर, मेरी शख्सियत को जमाने भर में खोजो मगर, मैं वो हस्ती हूँ जिसका किसी से भी किरदार नहीं मिलता। मुद्दत तक डोले हम मुनसिफ के निकाली, मुद्दत तक डोले हम मुनसिफ की निगाह लिए, जब आईना देखा तो खुद से बड़ा कोई गुनहगार नहीं मिलता। अपने होठों की हंसी उनके लबों पर सजाए, अपने होठों की हंसी उनके लबों पर सजा आए, मगर जब दर्द हमको होता है तो कोई भी हिस्सेदार नहीं मिलता, कोई भी हिस्सेदार नहीं मिलता।

0: कभी कभी।
1: जो कहीं ना मिल सका उसी को ढूंढती हैं, जो कहीं ना मिल सका उसी को ढूंढती हैं, बेचैन सांसें बस सुकून को ढूंढती हैं।

तन्हाइयों में कुछ दर्द पुराने निकले, तन्हाइयों में कुछ दर्द पुराने निकले, कुछ सिसकियां कुछ अश्क बहाने निकले, आज फिर प्रेम से पढ़ा उनको, बंद संदूक से जो खत पुराने निकले। ऊपर लिखा था प्रियतमा, नीचे लिखा था आपका, ऊपर लिखा था प्रियतमा, नीचे लिखा था आपका, इन दोनों के बीच मेरे तो जमाने निकले, इन दोनों के बीच मेरे तो जमाने निकले। रोना कौन सुनता है, कहो किसको सुनाए, रोना कौन सुनता है, कहो किसको सुनाए, दर्द को ही गीत बना महफिल को सुनाने निकले, दर्द को ही गीत बना महफिल को सुनाने निकले।

बार हम सफर है तू, बस तेरा साथ बना रहे। मैं क्यों ना इस सफर को ही सौगात लिखता जाऊं, मैं क्यों ना इस सफर को ही सौगात लिखता जाऊं।

0: हम प्रज्ञा गोयल जी की आवाज आपको सुनाते हैं। आप सुनिए प्रज्ञा गोयल जी की आवाज। तो ये हैं प्रसिद्ध कवियत्री प्रज्ञा गोयल।
1: नमस्कार, मैं प्रज्ञा गोयल मुजफ्फरनगर से रेडियो विकसता के सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। मैं श्री भारत सपोरी जी एवं श्री नरेश शर्मा जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी भावनाओं जो रचनाओं के रूप में प्रकट होती हैं अपने गीतमाला कार्यक्रम में स्थान दिया। एक बार पुनः रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 2। पेश कर रहे हैं आरजे नरेश शर्मा।
0: वैसे तो कहते हैं कि किसी खास चीज के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि जब तक एक खास जुनून के लिए सब कुछ ना छोड़ा जाए ना, तब तक वो मकसद हासिल नहीं होता जिस मकसद के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है। तो जिनकी शायरी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम के बीच में, प्रज्ञा गोयल जी, उन्होंने अपनी कलम के लिए, अपने शब्दों को एक मूर्त देने के लिए, अपने एहसासों को आप तक पहुंचाने के लिए सच मानिए बहुत कुछ छोड़ दिया।

आप सुन रहे थे रेडियो वितस्ता का ये विशेष कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला। और अब अपने रेडियो दोस्त नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा अगला प्रोग्राम लेकर आपके साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीत माला, पेश किया आरजे नरेश शर्मा ने। एडिटिंग व निर्देशन भारत सोपोरी का था। इसको रिकॉर्ड किया गया था स्टूडियो रेडियो वितस्ता अंबाला कैंट में। आप लोग अपनी राय जरूर हमें दें हमारे मेल आईडी पे, जो है radiovitasta@gmail.com, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9416013010। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोचु बोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजान रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: मैं। तो तू।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत। हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा हर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

मैं चाहुंदा हां इदां ही तू हसदी रह, दूरों दूरों दिल मेरे विच वसदी रह, मिलके मैनू मुख तो तेरे हासा ना उड़जे, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह, बिन देखे ही मेरियां गल्लां दसदी रह।

0: चल दी
1: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

देश है अपना देश है अपना देश है अपना देश है आज से सब रहे थे लाज से अपना देश है आज से सब रहे थे लाज से दूसरों के राज से उनके तख्त ताज से उनके तख्त ताज से कट गया है।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का परवाह। मैं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट अनु, और लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। पत्तेदार सब्जियां 45 से 60 दिन, अन्य 90 से 110 दिन में हो जाती हैं तैयार। अगस्त सितंबर में कम अवधि वाली पत्तेदार और गोभी वर्गीय सब्जियां उगाकर मुनाफा लें। किसान अगस्त सितंबर में कम अवधि वाली पत्तेदार और गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती करके आय बढ़ा सकते हैं। मानसून के तुरंत बाद का मौसम इसके लिए अनुकूल होता है। कम समय में तैयार होने वाली इन सब्जियों में मुख्य रूप से पालक, बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, चाइनीज कैबिज, ब्रोकली, मेथी और धनिया शामिल है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सब्जी विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार, इन सब्जियों का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकी और महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पालक, मेथी और धनिया जैसी पत्तेदार फसलें बुवाई के मात्र 45 से 60 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की फसलें पनीरी खेत में लगाने के 90 से 110 दिन के भीतर बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती हैं। खेती की अच्छी जुताई, गोबर या जैविक खाद बढ़ाएगी उत्पादन। उन्नत किस्मों का चयन और बीज दर अच्छी पैदावार के लिए हमेशा प्रमाणित और उन्नत किस्मों के बीजों का ही उपयोग करना चाहिए। पालक, ऑल ग्रीन, जॉबनेर ग्रीन, हिसार सिलेक्शन 23 और पूसा ज्योति बेहतरीन किस्में हैं। बीज दर 5 से 7 किलो प्रति एकड़। फूल गोभी नंबर 1522, रिया, गिरजा, विशप और कैस्पर उन्नतिशील किस्में हैं। बीज दर 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ पनीरी के लिए। बंद गोभी प्राइड ऑफ इंडिया इसकी एक अत्यंत शानदार किस्म है। बीज 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ पनीरी के लिए। मेथी एवं धनिया, मेथी के लिए हिसार सोनाली व धनिया के लिए हिसार सुगंध, हिसार भूमित जैसी उन्नत किस्मों की बिजाई की जा सकती है। खेत के लिए तैयारी और जैविक उर्वरकों का प्रयोग। सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता और अधिकतम उत्पादन के लिए खेत की अच्छी तरह जुताई करें। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और उसमें जीवाश्म ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में गोबर की खाद, केचुआ खाद, जैविक खाद या मुर्गी खाद का प्रयोग अवश्य करें। बिजाई के बाद केचुए खाद से ढक देना चाहिए। बंड की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 90 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधशाला में कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर और बीज की दूरी 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। बीज की बिजाई के पश्चात उन्हें शुद्ध केचुआ खाद से ढकना बहुत लाभदायक रहता है। यह खाद सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा जैसे मित्र फूफन से उपचारित होनी चाहिए, जो पौधों को बीमारियों से बचाती है। भूमि पर इस केचुए खाद की परत 0.5 से 1.25 इंच मोटी होनी चाहिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए पनीरी में हमेशा फवारा विधि द्वारा ही हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इस मौसम में मक्का की फसल को तना छेदक और पत्ता अगमारी के प्रकोप से बचाना जरूरी। फसल में रोग से बचाव के लिए मेकोजेब घोल का छिड़काव करें। मक्का की फसल में पत्ता अगमारी व शीत अगमारी आदि बीमारियों का अत्यधिक प्रकोप होता है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि पत्ता अगमारी में प्रभावित पत्तों पर मोतीनुमा या सीधे निरंतर लंबे स्लेटी भूरे रंग के हरे पीले प्रभामंडल वाले धब्बे देखे जा सकते हैं।
प्रमुख लक्षणों में डंडल पर पानी जैसे सफेद भूरे रंग के धब्बे बनना, डंडल का टूटना, सिल्क का अकड़ना और टूटना, दानों पर धब्बे बनना आदि शामिल है। संक्रमण बढ़ने के साथ हल्के भूरे रंग की फुफुंदी के साथ सरसों के बीज के आकार का काले रंग के स्केलोरेशिया भी देखे जा सकते हैं। यदि संक्रमण छल्ली तक पहुंचता है, रासायनिक विधि से पौधों पर 600 ग्राम मेंकोजेब इंडोफिल M45 का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस क्रिया को 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोहराएं। पौधों की निचली 2.3 पत्तियों को तोड़ने से भी शीत अगमारी रोग का प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। मक्का में फॉल आर्मी वर्म से बचाव एवं प्रबंधन। मक्का में तना छेदक और फॉल आर्मी वर्म प्रमुख हानिकारक कीट हैं। इनमें फॉल आर्मी वर्म अत्यधिक हानिकारक एवं बहुभक्षी कीट है, जो कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसकी छोटी सुंडियां पत्तियों को खुरचकर खाती हैं, जिससे पिन के आकार के छोटे छेद दिखाई देते हैं। बाद में पत्तियों पर कागजी झिल्ली जैसे अथवा बड़े अनियमित छेद बन जाते हैं। सुंडी गोब में मलमूत्र भी छोड़ती है। कीट का प्रकोप फसल की शुरुआती अवस्था में अधिक होता है, इसलिए फसलें उगाने के तुरंत बाद नियमित निरीक्षण करें और शुरुआती लक्षण दिखते ही उचित प्रबंध व रोकथाम के उपाय अपनाएं। खरपतवार नियंत्रण। HAU के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. महासिंह ने बताया कि मक्का में सभी प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 500 से 600 ग्राम एट्राजिन 50% WUP को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1 से 2 दिन के बाद या मक्का अंकुरण से पहले छिड़काव करें। ऐसे करें कीट नियंत्रण। फॉल आर्मी वर्म कीट नियंत्रण के लिए फसल की छोटी अवस्था 3 से 4 सप्ताह में 5% आक्रमण पर व 5 से 7 सप्ताह की फसल में 10% आक्रमण पर नीम की निम्बोली का 5% घोल या अजाडी रिएक्टिन 1500 ppm नीम तेल 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। मौसम, सुंडी और लागत ने बढ़ाया कपास में जोखिम। बाजरा, मूंग, गवार बने पसंद। दक्षिण हरियाणा के 3 प्रमुख जिलों में लगातार घटा कपास का रकबा। दक्षिणी हरियाणा की पहचान रही कपास की खेती अब लगातार सिमट रही है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी के किसान लागत, कम पैदावार, कीट प्रकोप और कमजोर भाव के कारण कपास से दूरी बना रहे हैं। बाजरा, मूंग और गवार जैसी फसलों को अब अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माना जा रहा है। महेंद्रगढ़ में 2020 से 2021 में 18,000 हेक्टेयर में कपास बोई गई और 6,372 टन उत्पादन हुआ। 2025 से 2026 में रकबा घटकर 12,70,000 हेक्टेयर रह गया। रेवाड़ी में 2019 से 2020 के 7,65,000 हेक्टेयर के मुकाबले 2025 से 2026 में कपास का क्षेत्र सिर्फ 2,32,000 हेक्टेयर रह गया, यानी करीब 70% कमी। उत्पादन में भी स्थिर नहीं रहा। 2021 से 2022 में औसत पैदावार 208 किलोग्राम प्रति एकड़ थी, जो 2023 से 2024 में 4,047.9 किलोग्राम हुई, लेकिन 2025 से 2026 में फिर 3,039.8 किलोग्राम रह गई। चरखी दादरी में 2016 के 23,245 हेक्टेयर से घटकर अब कपास का रकबा लगभग 6,000 हेक्टेयर रह गया है। 2025 में औसत उत्पादन 3,075.1
35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा। किसान क्यों बदल रहे हैं फसलें? कृषि अधिकारी डॉक्टर अजय यादव के अनुसार कपास की खेती में सबसे बड़ा संकट लागत और जोखिम का है। समय पर बारिश न होने पर सिंचाई खर्च बढ़ता है और अधिक बारिश होने पर फसल प्रभावित होती है। गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए कीटनाशकों पर खर्च बढ़ता है। बीज, खाद, मजदूरी और दवाओं की कीमत बढ़ने के साथ बाजार भाव में अनिश्चितता जोखिम बढ़ा देती है। ये थे आज के कृषि समाचार। आशा करती हूँ आपको इन जानकारियों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकें। स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब मुझे दीजिए आज्ञा, मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फर्द, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रुपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब मुझे दीजिए इजाजत, कोई और जानकारी लेके आपसे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गांवों वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई

दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: और मत छोड़ो, हर घर तक हर गांव तक आए।
1: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हमाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी, मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे, तुम्हें अगर इश्क है इससे, तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूँ। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: छोड़ो हर घर तक हर गांव तक आए।
1: नाइन्टी पॉइंट जीरो मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, सुनते रहिए दिल से।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करती थी। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखाओ।

हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शम्मी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शम्मी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मानी।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु।
1: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुन।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पेश है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6। कार्यक्रम आधारित है पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों पर। पेश करेंगे भारत सोपुरी।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, लेके आया हूं वितस्ता गीतमाला का एक नया एपिसोड। वितस्ता गीतमाला पूरे विश्व में सुना जाता है। हमारे पास जबलपुर मध्य प्रदेश से पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी ने अपने कविता संग्रह FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता को भेजे हैं। इन कविता संग्रहों का अध्ययन करने के बाद हमने निर्णय किया कि वितस्ता गीतमाला के माध्यम से उनकी लिखी कविताओं को आप तक पहुंचा सकें। मीना भट्ट सिद्धार्थ 2013 में सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ साल लोक आयुक्त भी रही हैं। एक कवित्री के नाते जाने माने कवियों ने अपना प्यार और आशीर्वाद से समय समय पर इन्हें नवाजा है, जैसे बीकानेर से श्री रवि शुक्ल जी, सीहोर मध्य प्रदेश से श्री धर्मराज देशराज जी, सीडी मध्य प्रदेश से श्री नजर द्विवेदी जी, मुंबई से श्री हीरालाल यादव व अन्य। आज जो कविताएं, गजलें आपको हम सुनाएंगे वो श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी के प्रकाशित काव्य संग्रहों एहसास के मोती व ख्याले मीना पर आधारित है। और आज का ये एपिसोड समर्पित है श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के दिवंगत पुत्र सिद्धार्थ को, जिनका निधन 3 अप्रैल 2022 को हुआ था। पहले कुछ दोहे आपको सुनाते हैं जिनके माध्यम से हम उनके सुपुत्र सिद्धार्थ जी को याद करेंगे। मीना जी लिखती हैं, जन्म मरण का खेल ये समझ न पाई पार्थ, गीत गजल था छंद भी सब कुछ था सिद्धार्थ, बसे क्षितिज के पार तुम भूल गए सिद्धार्थ, अब जीवन ये बोझ है क्या साउथ क्या नॉर्थ, चली तेज पुछवा हवा रूप बड़ा विकराल, जलता दीपक बुझ गया खोया घर का लाल, पीर समझ पाया नहीं बैरी था संसार, मित्र अकेले मातु थी करे स्वप्न साकार, सूखे सूखे हैं अधर अखियों में है नीर, ममता बड़ी अधीर है उर है अथा पीर, कबीरा साखी मौन है चुप मीरा की शाम, रूठे सीता राम भी जप लूं कैसे नाम, चर्चा करती रात दिन मिटे नहीं संताप, खंडित है विश्वास सब करते नित विलाप, मोह त्याग कर चल दिया भूला मातु दुलार, पल पल लड़ता मौत से लिए अश्व की धार, अतिशय अंतस पीर है मनवा रहे उदास, राजा बेटा लाडला करे हृदय में वास, बस यादें ही शेष है मीना अब सिद्धार्थ, सुनी गोद पुकारती करो काज परमार्थ, सुनी गोद पुकारती करो काज परमार्थ। ये शब्द है मीना भट्ट सिद्धार्थ जी के अपने पुत्र के लिए।

मीना भट्ट सिद्धार्थ जी लिखती हैं, जिंदगी भर के मेरे असबाब पत्थर हो गए, आपके जाते ही सारे ख्वाब पत्थर हो गए, देख कर तूफान सब गिरदाब पत्थर हो गए, आंसुओं के भी मेरे सैलाब पत्थर हो गए, बाद शब की सांस भी नाजो अदा से थम गई, मात खाए चांद तारे बाब पत्थर हो गए। अब मयसर है कहां हमको वफा संसार में, रिश्ते नाते और सब अहबाब पत्थर हो गए, अब तलक दुनिया में जिनकी कोई कीमत ही न थी, जब तराशा है उन्हें नायाब पत्थर हो गए, इल्तिजा है दे खुशी इस सरजमी को ऐ खुदा, नर्मो नाजुक फूल क्या अब दाब पत्थर हो गए, मुफलिसों को पूछता कोई नहीं संसार में, जुल्म भी इतने हुए आसाब पत्थर हो गए, कब मिले इनको रिहाई इस कफस से अब खुदा, कैद में मीना हसी सुरखाब पत्थर हो गए।

एक बहुत ही उम्दा गजल मीना जी ने लिखी है और मीना जी कहती हैं, बेजुबा रखते नहीं नफरत किसी के वास्ते, आदमी रखते हैं लेकिन आदमी के वास्ते, आरजू कुछ और इसको और न कोई जुस्तजू, बस ये दिल पागल हुआ है आप ही के वास्ते। मुख्तसर है जिंदगी, तैयारी कर लो हश्र की, वक्त कुछ अपना निकालो बंदगी के वास्ते। हाथ से अपने तू मुझको जहर का प्याला पिला, आ गया दीवाना तेरा खुदकशी के वास्ते। मेरी किस्मत में कहीं कोई दिया रोशन न था, मैंने खुद को ही जलाया रोशनी के वास्ते। छोटे कामों से नहीं मिलती बुलंदी दोस्तों, काम कुछ ऊंचा करो अब बर्तरी के वास्ते। एक झलक तेरी मिले तो रुखसती हो पुरसकूं, तेरे दर पर आया हूं मैं बस इसी के वास्ते। मीर गालिब दाग के जैसे ही मीना ने भी अब जिंदगी अपनी लुटा दी शायरी के वास्ते, जिंदगी अपनी लुटा दी शायरी के वास्ते। वाह, बहुत खूब मीना जी।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6 और आज हम आपको जो गीत गजल सुना रहे हैं वो आधारित है पूर्व न्यायाधीश व कवयित्री श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों ख्याल मीना व एहसास के मोती।

0: चल।
1: अब कुछ गजलें आपको सुनाते हैं दूसरे कवि संग्रह एहसास के मोती से। मीना जी लिखते हैं, वक्त के साथ चली चलती चली मीलों तक, साथ मेरे चली ख्वाबों की कली मीलों तक। आपकी याद में कुछ हाल हमारा यूं था, अश्क बहते रहे दिन रात जली मीलों तक। तेरे दीदार की हसरत थी सदा सीने में, देखते हम थे मोहब्बत की गली मीलों तक। काश मिल जाता हमें कोई जहां में अपना, दिल में हसरत यही अब देख पली मीलों तक। तन्हा था मैं न सफर में थी तेरी यादें भी, तेरी यादें तो थी मिस्री की ढली मीलों तक। खत्म होती है कहां रात गमों की साहिब, चांद की रोशनी भी हमको छली मीलों तक। हमने तन्हा ही गुजारा है सफर ये मीना, हर कदम तेरी कमी हमको खली मीलों तक। बहुत खूब, वाह।

श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी लिखती हैं, मेरी उल्फत के सहारे मुझे वापस दे दो, वो मेरे चांद सितारे मुझे वापस दे दो। चूमकर माथे को देते थे जो अक्सर तोहफे, चांद से मां के दुलारे मुझे वापस दे दो। हर घड़ी देते थे बचपन में जो ढेरों खुशियां, वो ही जादू के पिटारे मुझे वापस दे दो। देख लो चाक गिरेबान हुआ है मेरा, गुजरे दिलकश वो नजारे मुझे वापस दे दो। जिनको बरसात के पानी में चलाते थे कभी, फिर वो खुशियों के शिकारे मुझे वापस दे दो। अहमियत जिनकी जुदाई में समझ आई है, अपनी आंखों के इशारे मुझे वापस दे दो। खत मोहब्बत में लिखे थे जो तुम्हें मीना ने, आज बेखौफ हो वो सारे मुझे वापस दे दो। आज बेखौफ हो सारे मुझे वापस दे दो।

आज के इस कार्यक्रम का वक्त अब समाप्त हुआ जा रहा है। एक आखिरी गजल मीना जी के कलम से, वो लिखती हैं, लिखी थी इश्क की जो दास्तां

न थी सितारों की कुछ आरजू मुझे मीना, उतार लाए मगर आसमां कागज पर। अब आपसे समय है इजाजत लेने का और आपको छोड़े जा रहा हूं एक मनमोहक गीत के साथ। उम्मीद है आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बार फिर धन्यवाद श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ जी का, जिन्होंने ये काव्य संग्रह हमें यहाँ भेजे। हमारी ओर से ये एक छोटी सी भेंट मीना जी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7056413010 पर। नंबर एक बार फिर 7056413010। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। मिलता हूं किसी और कार्यक्रम में। तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 6। आज का कार्यक्रम आधारित था पूर्व न्यायाधीश श्रीमती मीना भट्ट सिद्धार्थ के काव्य संग्रहों पर। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट निर्देशन व प्रस्तुतकर्ता भरत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने। रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, रात भीगते भीगते गुजर गई तुम्हारे ही तसव्वुर में, पर मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह, मुड़ के नहीं देखा तुमने बीते मौसम की तरह।

कोई अब इन रास्तों से गुजरता क्यों नहीं? सफर तवील होने के बावजूद तुम नजरों से ओझल होते गए और दूर इन सहराओं में आंधियां थी, गर्दो गुबार के जजीरों के सिवा कुछ नहीं नजर आया। फिर भी उम्मीद बंधी रही, शायद एक परछाई लिपट जाए मुख्तसर सी जिंदगी के साथ, सिर्फ एक बात करके।

आसमानों में रहते हो, इसीलिए शायद मेरी आरज़ू से खेलते हो, मेरी मासूमियत पर मुस्कुराते हो। क़यामत तक साथ निभाएंगे और हमारे तुम्हारे इन रिश्तों को मजबूत डोर से बांधेंगे। इन्हीं आसमानों में जा बसेंगे, बनाएंगे अपना आशियाना, पर यह हो न सका। खुद तो निकल गए और हमें यहां छोड़ आए इन तन्हा हवाओं के संग।

आसमानों में जा बसी हो, तितलियों के संग हवाओं में तैरते हो, परिंदों की उड़ान नाप लेते हो, सितारों को छू लेते हो। मोहब्बत बांटते हो और इन तैरते बादलों में गुम हो जाते हो। चुपचाप इशारों ही इशारों में समझाते हो, रूहानियत का फलसफा बयां करते हो और इन फिजाओं को अपने आंचल में ढक लेते हो।

दुआओं का असर अब रहा नहीं, वरना सजदों में खुदा को तलाशना क्या मुमकिन नहीं होता। सहमे सहमे बुझे बुझे से ये उदास चेहरे इबादत में मसरूफ, इन्हें ही रोशनियों का इंतजार, क्योंकि अब यह अंधेरों से निकल आए एक नए कारवां में शामिल होने के लिए।

धाराओं से गुजर कर इन रास्तों पे तुम मेरा एहसास हो। ख्वाहिशों की परवाज लिए बुलंदियों को छूना एक ख्वाब की तरह दिल में पलता रहा। काश हम तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कोहसारों के उस पार ले जाते जहां मोहब्बतें रवा दवा है, जहां खुशबू है प्यार की और बदलते हैं मौसम।

0: पर्वतों के पेड़ों पर शाम के साए हैं, कहीं से मौसम पिघलने की आहट है और खुशबू में सिमटी हैं धड़कने।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:30। FM 90.0 MHz पर ये रेडियो वितस्ता है और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। दिन भर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज का हमारा ये प्रसारण आपको पसंद आया होगा और हमारी बातों ने आपके दिन को थोड़ा और खुशनुमा बनाया होगा। अब बारी है आज के प्रसारण को विराम देने की, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर चर्चा करते हैं आज के विशेष दिन की। आज का दिन समर्पित है राष्ट्रीय खेल दिवस को, यानी नेशनल प्ले डे, जो हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये वही दिन है जब हॉकी के जादूगर भारत रत्न मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। उनकी हॉकी स्टिक मानो जादू की छड़ी थी, गेंद जैसे उनके इशारों पर नाचती थी और प्रतिद्वंद्विता बस देखते रह जाते थे। उनके इसी अद्भुत कौशल ने भारत को ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक दिलाए और भारतीय हॉकी को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दी। लेकिन खेल दिवस का महत्व सिर्फ एक महान खिलाड़ी को याद करने का नहीं, बल्कि ये दिन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि खेल हमारे जीवन में कितना जरूरी है। खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अनुशासन, फिटनेस, धैर्य और टीम भावना सिखाने वाला सबसे बड़ा गुरु है। मैदान पर खेला गया हर खेल हमें सिखाता है कि हार और जीत जीवन के दो पहलू है, और असली विजेता वही है जो हार से सीखकर आगे बढ़ता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां बच्चे और बड़े दोनों ही मोबाइल के स्क्रीन में उलझे हुए हैं, ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम रोजाना कुछ समय खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए जरूर निकालें। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन की नींव रखता है और यही नींव एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण का आधार बनता है। तो आइए मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि स्वरूप वितस्ता के नाम एक शेर के साथ आज के प्रसारण को देते हैं विराम। आज की पंक्तियां आप सभी के लिए, पंक्तियां यूं हैं: वितस्ता के तट पर बहती हर लहर एक कहानी है, वितस्ता के तट पर बहती हर लहर एक कहानी है, इसके जल में बसी हमारी सदियों की निशानी है। खेल हो या साज, हर सुर में जोश भरना है, खेल हो या साज, हर सुर में जोश भरना है, वतन के हर सपूत को आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, ये थे आज की पंक्तियां और आज का विषय, और जल्दी से मैं आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 30 अगस्त 2026 रविवार को जो कार्यक्रम हम लाए वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम से और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे भक्ति संगीत, और 7:05 पर आप गांव चलें एपिसोड 11, हम आपको लेके चलेंगे अंबाला के तेजामोड़ी गांव में, पेश करेंगे भारत सोपोरी। और 8:30 आप सुनेंगे किरणी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 8, और कल की कड़ी है रिश्ते सुलझाने हैं तो मतभेद सुलझाने होंगे। 9:30 बॉलीवुड की सुनहरी यादें, कल मोहम्मद रफी पर कार्यक्रम होगा, और 10:15 पर वितस्ता गीतमाला एपिसोड 8। माफ कीजिएगा एपिसोड 15 और कल का एपिसोड होगा आधारित डॉक्टर सीमा वर्णिका की गजलों और कविताओं पर। संगीत की सभा जारी रहेगी, 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे सरगम, एपिसोड होगा 3, पेश करेंगे आरजे किरनी और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है धड़कने हैं उदास। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजिएगा हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई बातों नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खेल भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अब अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहेगा इसी कामना के साथ कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।